0: आजा करन, हो गया रिकॉर्ड।
1: Hey, Cuddy, watch out for the Bay Boys, dog.